0: strongly hold कर लिया है now we find out कि these are not the right things हम लोगों को
1: need to change with the time
0: हाँ
1: right
0: with the time के अलावा भी कि exactly ये चीज नहीं कही हुई आप एक बड़ी चीज को जैसे वो कहती है कि तुम लोगों को शादी के वक्त भी मजहब याद आता है कि आई एम अलाउड टू गेट मैरिड तो और तुम कितनी सुन्नतें और फर्ज पूरे कर रहे हो
2: हाँ सही बोल रही थी वो क्या और चीज आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा
0: उसका भी आप एक गलत तरीका पिक करके आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपने लिए एंड देन जैसे आपने भी नाम लिया जो था इसका सबक अमर का ड्रामा
2: केस
0: 9 तो उसमें भी people are scared they don't know what is the really aapko how you have to go through and aapke rights kaun se hain so when you know that so that's really helped to
2: help it helps you know when you come to know the right thing
1: right
2: bilkul
1: aur jis tarah apna reputation aur phir jo hota hai apne kisi honor mein jaisa hai izzat ka Reputation, of course, you have to keep your reputation by honoring someone.
2: Yeah.
1: I think it can be, right?
0: Yeah, and I think izzat is izzat aurat ki bhi hoti hai, izzat aadmi ki bhi.
1: Dono ki, yes.
0: Lekin agar ye samajhte hain, khas taur pe back home, agar main samjhu, I don't know, it's right or wrong, ki wo samajhte hain ki sirf aadmiyon ki honor hai, aurat ki koi honor nahi hai.
2: तो इसलिए ये इसका इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी डायरेक्शन इनका था सैफी हसन का बहुत अच्छा डायरेक्शन था एक्टिंग बहुत सुपर थी एहसन खान ने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की सबकी एक्टिंग अपनी जगह पे अच्छी थी
0: अपने रोल के लिहाज से वेट लूज और वेट गेन और ओल्ड
2: शी लुक्स ओल्डर या वो बड़ा अच्छा इन्होंने आई थिंक सो मच रियलिटी
1: देखा
2: जाए तो और वो जब रियलिटी लगती है ना तो वो ड्रामा देखने में मजा बहुत आता है
1: इसमें जो एक्टर एक्ट्रेस थे उसमें थे उर्वा हुकैन एहसान खान सानिया सईद सैफ अली खान नौमान मसूद अलीना खान सरदार नबील एंड उज़्मा
0: तो डायरेक्टर थे
2: नो सैफ अली खान नहीं जो
1: कि
2: बैलन का था सैफ अली खान जो वो वाला था
0: वो
2: लड़का जो पठान था
0: अच्छा उसने गाना
2: कितना अच्छा गाता
0: है
2: सैफी हसन है जिन्होंने सैफी
0: हसन
2: और सैफ अली खान वो लड़का था जो सब्जी वाला और पता है इसके ऊपर काफी सारी रील्स भी बनी कि वो औरत कह रही है कि वो मैं चली जाऊंगी सब्जी वाले के साथ अगर तुमने इन्होंने काफी मजाक भी उड़ाया उस बात का
0: शी पिक फ्रॉम द एवरीबॉडी
2: क्योंकि उसका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं होता था
0: because she said ki he give me a respect
2: deta tha
0: wo mujhe respect deta tha
2: isliye wahi jati thi
0: to yahi main keh rahi hu ki
2: Respect.
1: Everybody asks for respect. आज का जो शो इसको स्पॉन्सर किया है ऑप्टिम आईवेयर एंड ऑप्टिमेट इनका फोन नंबर 4034636666 A to Z वैक्यूम आंसर जी आप मुझे पूछ रहे थे हनीफ मावजी 4034278882 A to Z वैक्यूम अगर आप मेरा नाम लिखी ऑफ कोर्स ही विल गिव यू गुड प्राइस और डायसन का आपका कुछ भी नया लेना हो या तो मैं सर्विस करवाना हो डायसन ये वैक्यूम बहुत मशहूर है ऑफ कोर्स ही कैन डू इट फॉर यू A to Z वैक्यूम यहाँ पे हरम जो कि नया रेस्टोरेंट खुला पाकिस्तानी वहाँ की निहारी बहुत ही मशहूर है इनका फोन नंबर 4036296361 मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बिनिंग जो कि अपने डीडी बैंक के लिए काम करती है इनका फोन नंबर 4036819687 और फिर हमारे आखिरी जो है कास्केट प्रिंटिंग अगर आपने कुछ डिजाइन करवाना फॉर वर्क और होम या तो कुछ जो प्रिंट करवाना यू कैन कॉल शफीन एट 4032502 Yes, you are listening to KWJ Dharma Desk और मेरे साथ हैं सलमा जी एंड अंसा जी यहाँ पर मौजूद हैं अगला जो ड्रामा आज हमारे लिस्ट में है बस तेरा साथ हो
0: It's also another beautiful drama another beautiful
1: okay, जिसमें फरहान सहित सना जावेद oh my god, she's my favorite जोया नासिर हारिस वहीद सबा सलमान शगुफ्ता फरहान रिजवान अली जाफर टिप्पू आलिया अली
2: बहुत अच्छा ड्रामा है अभी बस नेक्स्ट वीक खत्म हो रहा है
1: नेक्स्ट खत्म हो रहा है
0: लास्ट हो गया है
2: लास्ट सी लास्ट है नेक्स्ट मंडे को और उसके बाद हुरमत शुरू हो रहा है वो भी एक लग रहा बहुत अच्छा है जो मीम से मोहब्बत की थी अपनी धनानी वो आएंगी तो ये ड्रामा बहुत इन्होंने सही दिखाया एक तरीके से जो हो रहा है दुनिया में कि आपके जो चचा और दूसरा भी नया ड्रामा भी शुरू है जिसमें उनकी پھپھی نے ان کے ساتھ ایسے کیا اس میں

0: ने इनके चचा ने किया क्योंकि वो अपना सारा बदला अपने भतीजे से ले रहे हैं लेकिन वो बच्चा बेचारा क्योंकि वो इतना डरा सहमा रहता था वो कुछ बोल नहीं सकता था और ये सब चीजें होती हैं और दादा बेचारे परेशान वो एक तरीके से मोहताज हैं क्योंकि उनको तो ये और सारा काम उनका बेचारा पोता अनस कर रहा है तो ये फरहान सईद जो है और बड़ी अच्छी इसकी स्टोरी लाइन है बड़ी सुलझीवी स्टोरी लाइन है तो आई विल मिस दिस ड्रामा क्योंकि सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग भी है और तुम क्या कहती हो सन
1: बहुत बहुत खूबसूरत यही मैं कह रही हूँ कि पहले जो ड्रामे चल रहे थे एंड वी वर सो हैप्पी वाचिंग सो एक्साइटेड और ये था कि अब ये खत्म बट अनदर वन जो आ रहे हैं वो भी
0: अच्छे
1: तो इसमें बस अगेन रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि नोबडी कैन बी योर पेरेंट्स Nobody can be your brother and sisters. Only जो रिश्ते होते हैं वही होते हैं अदरवाइज एवरीबडी इज देयर फॉर देयर ओन
2: सेल्फ यू नो कि अगर कोई आपके साथ है चाहे कोई भी हो लेकिन अगर जब तक आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं आएगा या भरोसा करवाने की वजह ना होगी तो आई थिंक इट्स वेरी अगर वो फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी
1: नो व्हाट आई मीन कि जैसे आप कर देते हैं कि चचा ये जायदाद संभालेंगे और फिर बाद में बच्चे को उनको अपने बच्चे नजर आ रहे हैं उनको दूसरे का बच्चा नहीं नजर आ रहा है अब जैसे उसका भाई है भाई को अपने बच्चे बीवी बच्चे नजर आ रहे हैं उनको बहन नहीं नजर आ रही उसमें वो ही इज टेकिंग अपनी बहन का सारा जो राइट्स हैं वो लेकर और वो ही इज ट्राइंग तो हम लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं वो ये कर नोबडी विल डू
0: इट हार्डली कोई एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं एंड वो तो होंगे एक्सेप्शन हर फील्ड में हर रिलेशन में हर जगह पे एक्सेप्शन है मियां बीवी में भी माँ बाप में बहन भाइयों में रिश्तेदारों में हर जगह एक्सेप्शन
1: लेकिन किसी को भी अपने बच्चों से आगे
0: कोई भी नहीं नजर आता एंड देन देखे ना उसका उसका रिजल्ट क्या निकला जब उसको हर बात उसकी छुपाती गई शायान की और उसको हर दफा माफ कर दिया गया तो वो बच्चा ये भी तो कितना अच्छा दिखा रहे हैं कि आप अगर बच्चे को सही तरबियत नहीं देंगे उसके हर चीज पे पर्दा डाल देंगे तो वो बच्चा क्या बनेगा तो वही
1: दिखाएगा
0: तो वही बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसी चीजें जो माँ बाप करते हैं उनको पहले तो रियलाइज नहीं करता कोई लेकिन जब वो बहुत हाथ से निकल जाता है तो फिर उनको एहसास होता है कि हमने गलत काम
2: किया तो अच्छा मेरे पास प्रोमो इसका वीडियो है लिसन टू बस तेरे साथ हो का प्रोमो
3: तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम्हारे सारे गुनाह धुल गए तुमने जो कुछ किया है ना मेरे साथ उसकी कोई माफी नहीं
4: मैंने जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत सबर से गुजार लिया था लेकिन ये नहीं तुम्हें नहीं छोड़ सकता है
3: हमारे इस रिश्ते की बुनियाद ही बहुत खोखली है मैं हमेशा बेयकीन रहूंगी और तुम शर्मिंदा
4: मैं अब बनूंगा तुम्हारा बाप मैं हर कमी पूरी करूंगा अनस माँ बाप के बगैर रहना सीख लिया अपने
5: हमने अनस को कारोबार से बेदखल करके शायान के हाथ में बागडोर थमा दी हमसे बड़ा अहमद भला कौन होगा
4: दुनिया में हर चीज का रास्ता मिल जाता है हम सब सीधे ढूंढ लेंगे
3: ऐसे फिर ना मिला तो तुम्हें क्या लगता है
1: इजी होता है कह दो माफ कर दो जाओ बट जिसने गुजारा है वो कैसे माफ कर दे
0: एंड शी वेंट थ्रू उसको नहीं पता था कि सबको मालूम था और शी वॉज द ओनली वन के उसको नहीं मालूम था तो वो कैसे इतनी जल्दी माफ कर सकती है उसको भी तो है ना कि मैं अपने मियाँ को ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं
1: सजेशन ना
0: हाँ मैं अपने मियाँ को माफ करूँ कि ना करूँ क्योंकि नाउ शी उसका थोड़ा सा जो यकीन है ना हिल गया शी इज अपसेट जाहिर बात है एनीबडी वुड बी कि मेरा अपना मियाँ ये सब कर रहा था
1: उसको भी मालूम था
0: उसको भी मालूम था
1: सी दैट कि मैं कितनी अपसेट हूँ रो रही हूँ
0: तो ये ना बड़ा बड़ा एक्टिंग एक्चुअली दादा प्रोटेक्टेड नॉट प्रोटेक्टेड हिज कजन एज मच एज ही वाज जो उन्होंने दादा ने उसको कसम दिलाई थी वो ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज थी
1: वो तो थी पर देन बाद में वो कह रहा था ना कि दादा की कसम का भी नहीं लेकिन शायद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं फाइट कर सकूं
0: क्योंकि वो शुरू से उसका उसको इतना डराया इतना सहमावा बना दिया था कि वो कुछ बोल नहीं सकता था और फिर ये जब घर के एक तरीके से आई घर की ये बात तो वो चाह रहा था कि किसी को ना

0: पता चले, मेरी बीवी को तो स्पेशली ना पता चले, लेकिन कोई बात ऐसी जो खराब बातें होती हैं वो आई जाती हैं,
1: आई जाती हैं बिल्कुल
0: सबके सामने. तो इसी
1: इसमें जो सना जावेद की एक्टिंग कैसी
0: है, मुझे तो
2: शी इज अ वेरी
0: गुड एक्ट्रेस. या हमीद और वो आजकल हारिस कितनी जगह आ रहे हैं, ये हारिस की या हारिस की अब नया ड्रामा भी शुरू हो रहा है तो हो गया एक्चुअली. तो हारिस बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. नहीं नहीं
2: मोस्टली ड्रामा में फादर अब वही
0: नहीं नहीं वो हारिस
2: वो बच्चा
0: वो शायान हारिस वो बहुत अच्छा एक्टर है एक्चुअली. उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, क्या नाम है उसका.
2: ही वर्क इन द हॉलीवुड मूवीज.
0: हाँ एक हॉलीवुड में भी किया जो बाप बना है उसका नाम क्या है.
1: हारिस वहीद
0: नहीं, हारिस तो शायान है
1: या तो फरहान ताहिर, रिजवान अली जाफरी.
0: फरहान ताहिर बहुत अच्छे बहुत अच्छी एक्टिंग करता है. उसके लीडर भी मैंने देखी, लीडर में भी बाप का और उसका मिनिस्टर का रोल जो उसने किया बहुत अच्छा किया था.
1: सो नेक्स्ट लाइक जो है नेक्स्ट ऑन द लिस्ट नश्तर, जिसमें दानिश तैमूर, अनमोल बलोच, नईमा बट, उस्मान पीरजादा. अच्छा उस्मान पीरजादा इज बैक. हारून रशीद, सॉरी हारून शाहिद, यूसुफ महमूद, निदा, अली डायन, रमशा.
0: कैसा लग रहा है, लग
2: रहा है
0: अच्छा पता है मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी शुरू से. देखो वो लड़की उस आदमी को अच्छी तरह जानती नहीं थी, दानिश को, यू नो ही इज अ बिग शॉट और वो जाता है यूनिवर्सिटी की उसमें. वो नौकर की बात सोच के उसने समझ लिया कि दानिश इज लाइक दैट. उसने जान ना पहचान ना उसको मालूम है कि वो किस टाइप का आदमी है क्या है. और खड़े होकर उसने सारे लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की. इट इज माय ओपिनियन कि शी डिड अ रॉन्ग थिंग. वो बगैर जाने पहचाने उस आदमी को, कि वो आदमी बहुत अच्छे काम भी करता है, तो आप किसी की बेइज्जती तो नहीं कर सकते ना. आपके नौकर ने किया था जो भी किया था. तो मुझे वो बात शुरू से अच्छी नहीं लगी. एंड ही डिडंट लाइक इट आल्सो कि मैं इतना काम करा है मैंने चैरिटी का, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, एक लड़की ने उठकर पोडियम पे जाके और कुछ नहीं तो पूरे लोगों के सामने, और इट बिकम्स वायरल. एक चीज आप किसी के सामने बोल दें, लोग खड़े होते हैं मौके की तलाश में.
2: आजकल वायरल भी हर चीज फॉरेन हो जाती है,
1: फॉरेन हो जाती है.
2: वो एंड उसमें भी वो यही था ना कि बिकॉज शी नो के उसके घर में हुआ है, उन लोगों ने किया है.
0: हाँ लेकिन देखो अंसा, ही डिडंट डू इट.
2: आई नो
0: ही पर्सनली डिडंट डू इट
2: ऑफ कोर्स, लेकिन शी के उनके घर में वो काम करता था.
0: हाँ, इट डजंट मैटर काम करता था, लेकिन
2: घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है.
0: लेकिन आप किसी की भी, अगर सपोजिंग मेरे घर कोई काम कर रहा है तो मैं तो शायद उस तरह की नहीं हो सकती ना. वो उसने किया जो भी, तो अंजा के कोई मेरी बेइज्जती करे सबके सामने, तो आई डोंट थिंक आई लाइक इट.
2: नॉट राइट. लेकिन ये कि फिर वो वही बात है कि एज अ स्टूडेंट नई जनरेशन,
0: वो लोग आ जाते हैं जोश में, आ जाते हैं
2: वो जो कहते हैं ना आउटस्पोकन.
0: और फिर आई नो बट एक्टिंग वाइज he is the role he is playing uski ek tarike se sahi hai kyunki wo ab revenge lena cha raha hai kyunki now another thing she did ke uske sath baith ke wo apne friend ke sath baith ke uska wo bana rahi hai video jab ye pakadta hai jaake usko ye dekha tha tumne
2: kaun sa
0: dekho she is now putting it out in public that he what type of a person is because now he is He's kind of harassing her. तो वो वीडियो बनाने लगी थी तो वो पहुंच जाता है तो वो भी तो गलत काम करने लगी थी.
2: जाके माफी मांग रही है.
0: माफी मांग रही है, I understand, but you cannot go and behind his back जाके किसी के सोशल वो करे. किसने तो नहीं किया जाके उसको सोशल.
2: नहीं दे रहा,
0: दे रही,
2: दे रहा आदमी.
0: हाँ लेकिन आप फिर भी, दिस इज माई ओपिनियन, of course you can, you can,
2: I know
0: के आप जाके किसी के बारे में एक वीडियो बनाएं कि इसने उन्हें ऐसे किया और उसने ऐसे किया, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग आउट एंड उसके बारे
2: में जरूरत ही नहीं है.
0: हाँ जरूरत नहीं है, लेकिन देन शी ऑल्सो शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आप पूरी दुनिया में उसको बदनाम करें.

0: क्योंकि वो एक दफा आ जाता है सोशल मीडिया पे तो
1: जो उसने उसको ऑफर की थी ना कि तुम मेरे साथ चल के रहो उस तरह की
0: लेकिन वो करता नहीं वो करता अगर तो फिर आप कर सकते थे बट द वे द स्टोरी लाइन वाज गोइंग ही वाज जस्ट मेकिंग हर स्केर्ड
1: मुझे
0: ही इट्स अ ओके ड्रामा आई एग्री विद यू इट्स अ ओके ड्रामा
1: मुझे एनीवे जो वो जो दानिश तैमूर के जितने भी रोल होते हैं कि वो आसमान से उतरी भी कोई चीज है
0: वो खैर वो लास्ट वाला ड्रामा बेहतर था हमराई उसमें उसमें आसमान से नहीं उतरा
1: उसमें आसमान से नहीं उतरा था
0: वो बड़ा अच्छा ड्रामा
2: जिसे प्रोमो प्ले करते हैं मास्टर
3: उसकी चीखें आज भी जिंदा हैं रोजे अव्वल की तरह मेरे कानों में गूंजती हैं
4: कुछ छोटे कुछ जख्म उम्र भर साथ रहती है उम्र भर दुखती रहती है एहसास दिलाती रहती है
5: मेरे अंदर जलती हुई शाह दाऊद के इश्क की आग को कोई नहीं बुझा सकता आंटी और जिस दिन ये आग बुझ गई ना तो बस राख बच जाएगी
6: ऐसा कभी नहीं होगा कभी नहीं
5: मैं और क्या करूंगी बाबा मैं और कर भी क्या सकती हूँ
7: तुमने निकाह कर लिया दाऊद मुझे बताया भी नहीं
5: मैं बहुत डर गई हूँ बाबा मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है
0: Yeah.
2: Just wow yeah. for Pakistani dramas. Wow, you know, it's good to see all these promos. And
1: so do you watch?
2: Man, you know, for last week or ten, for last week's, I didn't have time.
0: Yeah.
2: But of course, I'm just going through with thanks to AI helping me a lot.
0: you can
2: use it in a positive way.
0: Yeah.
2: So you know, ye drama, baki drama se kyu itna kyu alag hai? Or is it different?
1: अगर थोड़े से reality से अगर हटके हो तो फिर थोड़ा different लगता है.
0: लगता है हाँ.
1: On those other dramas, they really touch the very वो जो कहने touch your heart. ये this is a just a drama.
0: This is a just a drama.
2: Just like you are watching.
0: Yeah.
1: This is a just a drama.
0: Yeah.
1: But those other ones they touch.
0: They touch you. Yeah. That's right. Yeah.
2: Well, you're listening to Coffee Jalal on Radio Sasgam 94% FM. तो लेते हैं छोटा सी break. We'll be right back. Don't go anywhere. KWJ drama does continue after this. These messages. Once I find it, there we go. We'll be right back.
8: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696 ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 587-617-4696
9: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
10: ਟਰੱਕ ਚਾੜਨ ਲਈ ਥੱਬਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਈਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
9: ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਓਨਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ

0: आज के ड्रामा आज के एपिसोड में ये था.
1: सम टाइम आई थिंक पप्पी और उनको इतना बुरा बनाते हैं.
2: इफ आई थिंक
1: आई एम अ पप्पू आल्सो.
0: या तो
1: एंड आई लव माय
0: या वी लव. अगर मैं ताज से कह रही थी अगर मेरी भतीजे के साथ ऐसा कुछ होता तो मैं तो बिल्कुल उसको पकड़ के अपने साथ ही रख लेती. लेकिन अंसा देर आर एक्सेप्शंस एंड देर आर
1: एक्सेप्शंस तो होते हैं लेकिन
0: ऐसे लोग होते हैं दुनिया में.
1: सम टाइम बिकॉज मदर शी डोंट वांट her son to marry him.
0: वो अपनी बहन की बेटी से शादी कराना चाहती थी.
1: She really wanted to के उसको किसी तरह भी
0: उसको degrade करे उसको. या
1: otherwise इतना बुरा नहीं होता.
0: नहीं होते हैं. नहीं अंसा होते हैं जो हम रियलाइज नहीं करते. बट आई हैव हर्ड स्टोरीज. हमारी अम्मी बताया करती थी स्टोरीज के इसका इतना जालिम फुप्पो थी उसकी इतनी जालिम खाला थी इतने जालिम चचा थे.
1: एक्चुअली होता ये है कि मदर इज क्लोज फ्रॉम अपने बहन भाई से क्लोज होती है ना.
2: Yes.
1: तो बच्चे भी फिर उसी से क्लोज होते हैं.
0: नन
1: क्योंकि वो ससुराल का रिश्ता और फिर वो ये कि वो फिर क्रिटिसाइज होना है कि अगर ये गलत कर दिया ये अच्छा कर दिया भाभी को कि ओ भाभी ये गलत कर रही है तो वो दे ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर.
0: थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है. लेकिन देखें एक्सेप्शनल तो उधर भी दिखाया है. वो चचा जिस तरीके से बस तेरे साथों में था इसी तरह इन्होंने यहाँ फुप्पी को दिखाया है. बिकॉज फुप्पी अपने आप को अच्छा साबित करना चाह रही है और उस बच्ची को डिग्रेड कर रही है हर दफा. तो वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटे की वो बेटा उससे शादी करे. उसने अपनी बहन की बेटी को दिया हुआ है कि मैं तुम्हारी शादी उससे करूंगी सीरत से. उसका नाम सीरत है इसमें. तो It's happening and
1: लेकिन वो बहन की बेटी है ये भाई का बेटा है तो रिश्ता तो सेम है.
0: रिश्ता तो सेम है लेकिन तुमने जिस तरह से कहा कि जिससे क्लोजनेस हो. लेकिन I personally think के ऐसे रिश्ते होते हैं जो
1: होते?
0: जो जो लोग इस तरह से उनका अंदर होता है ये. और एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं. तो ये
1: जरूरी नहीं है कि जो आपके रिश्तेदार हैं वो बहुत अच्छे होंगे आपकी टेक केयर करेंगे. जो बाहर वाले हैं वो नहीं करेंगे
0: या
1: लेकिन अगेन फिर वो वही बात आ जाती है कि यू हैव टू गो क्लोजर टू योर फैमिली. और अगर वो नहीं कर रहे तो यू
0: तो फिर चॉइस है. और वो बच्ची भी बड़ी वो है जब उसने सुना और बातें सुनी तो अब वो चाह रही है कि वो हॉस्टल चली जाए क्योंकि वो उसको भी समझ आ रही है बात. बेचारी वाज सो कंफ्यूज्ड एंड सो डेवास्टेटेड उसकी अपने माँ बाप के मरने के बाद और अपनी जो उसने रिश्तेदारों का रवैया देखा. और लाइक इट इज सो पैथेटिक टू सी आज का जो एपिसोड था कि वो
1: आज का नहीं
0: हाँ वो जो आदमी उसके घर का मालिक था उसका रिश्ता वो जो जिसकी बीवी मर गई है बड़े बड़े बच्चे उससे 30 साल 40 साल बड़ा है उसका रिश्ता लेकर आ गई इस बच्ची के लिए. लाइक आई वॉज सो
1: जमाने गए
0: बच्चे नहीं करेंगे लेकिन वो लोग ये समझ रहे हैं कि अब ये अकेली है इसके ऊपर कोई साया नहीं है कोई नहीं है तो इसकी जिससे भी शादी करनी है इसकी करा दो. अब वो लड़की जब शादी
1: रास्ते से
0: हट जाए तो वो ये आज के एपिसोड में था जो मुझे बहुत अजीब लगा कि वो
2: ऐसा होता भी
0: है. होता है
1: बट ये जस्ट स्टार्टेड अभी आई थिंक बहुत ज्यादा
0: पांचवा किस्त
1: स्टोरी डेवलप
2: हो गया.
1: और आगे जाके पता चलेगा कि गुलबहार को कहाँ गुलबहार
0: मिली.
2: जी जी तो इसमें जो सनम सईद हैं इमाद इरफानी कोमल मीर बख्तावर मजर शाहूद अलवी इसको लिखा आलिया बुखारी ने और डायरेक्ट बाय मेहरीन जब्बार.
1: राइट मेहरीन जब्बार का सपोज टू बी अच्छा होना चाहिए. लेट्स सी
0: आगे जाके देखते हैं. अभी तो शुरू डेवलप हो रही है स्टोरी ना.
2: लीजिए इसका भी प्रोमो है लेट्स एंजॉय.
0: अच्छा
3: से बहुत आगे बढ़ चुकी है हालात.
4: तुम्हें क्या लगता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा?
3: स्पारंकार भी तो नहीं कहना.
5: दिया की जिंदगी में बहारें नहीं आ सकती.
6: और अगर शहरयार का दिल फिर गया उसको तो शादी का दूसरा बहाना मिल जाए.
5: ना तुम उसकी किस्मत बदल सकती हो ना ही हाल
6: तरह ये देखकर काफी हैरान रह जाएगी कि समीना इतनी सख्त दिल भी हो सकती है दिया के लिए एक बुड्ढे का रिश्ता लेकर आ गई अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया दिया के साथ कितनी नाइंसाफी की दूसरी तरफ शहनाज की भरपूर कोशिश

0: होगी कि किसी तरह शहरयार की दूसरी शादी करा दी जाए और इस बार शहरयार भी खामोश रह जाएगा, जिसका अफसोस सारा को होगा। दोनों मियां बीवी में बातचीत बंद हो जाएगी।
1: तो ये था,
2: देखते हैं हाउ इट गोस। अभी तो बहुत शुरू है इसमें।
3: हरीन जबार इज अ वेरी गुड डायरेक्टर,
2: वेरी गुड,
3: पिक करती
2: है।
3: नाउ स्टोरी डेवलप होगी, देन वी विल
2: नो व्हाट इज लीड, वेयर इट इज लीडिंग टू।
1: तो इसमें किसकी एक्टिंग आपको अच्छी लगी?
2: अभी तो मुझे फिलहाल तो सनम सईद, सनम सईद इज वेरी गुड, और बच्चे भी अच्छी कोशिश कर रही है अच्छी एक्टिंग करने की, एंड हाँ शी इज डूइंग गुड। एंड अभी आगे आगे देखें क्या होता है, क्योंकि अभी नाउ एवरीथिंग इज डेवलपिंग, तो वेयर इट लीड्स टू, वो तो अभी आगे तीन चार किस्तें और हो जाएंगी तो देन पता चल जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग।
1: जी जी जी। जी अगला आज का जो आखिरी ड्रामा जो हमारे लिस्ट पर है, दरे निजात। निजात का दरवाजा।
2: जी निजात का दरवाजा। या दिस इज अ वेरी क्या कहा जाए कि जब आप अच्छे होकर आपके दोस्तों के असर की वजह से एक अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं, लेकिन आप बन नहीं सकते। आप लाइक इट्स वेरी ऑड ड्रामा, और उसमें जो शहरिया, इसमें भी शहरिया है ना, मुनव्वर है ना, शहरिया और मुनव्वर का जो रोल है, लाइक इसके ऊपर काफी मजाक बना है कि आजकल के जमाने में इस तरह के लड़के कहाँ होते हैं, जो अपनी माँ की इज्जत, अपने उसके बोलने का तरीका, वो इतना रिलीजियस है, कुरान पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, लेकिन इतना मजाक बनाया हुआ है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए कि मुझे मालूम है कि है ऐसे लोग और मैं जानती भी हूं उनको, ऐसे लोगों को, लेकिन इसका मजाक उड़ाना तो आप एक तरीके से वो हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग हैं ही नहीं, बिल्कुल गलत है, दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं,
3: यकीन नहीं आ रहा कि इतना
2: परफेक्ट भी कोई हो सकता है, और एंड दैट इज एवरीबडी इज थिंकिंग के कैसे हो सकता है, लेकिन जो उसके उसने जामिल ने जरियाब के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था मेरे ख्याल से, कि आपने बगैर बताए, अच्छा आप चेंज हो रहे हैं ठीक है, लेकिन यू कांट पुट अपनी सारी चीजें उस पर, आप नहीं किसी और पे नहीं मुसल्लत कर सकते, और फिर उसको ये कहना कि तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, यहाँ तक कि अबू बकर जो शहरयार मुनव्वर है वो भी नहीं करेगा, तो इट वॉज अ बिग स्टेटमेंट, जो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट दे तो मुझे लगता है कि बीइंग अ गुड मुस्लिम यू कांट डू, यू शुड नॉट डू दैट, मुझे ऐसे लगा। व्हाट डू यू से?
3: एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी गुड टॉपिक। इसमें ये कि आप अपने आप को, एवरीबडी थिंक मैं परफेक्ट हूँ, और रिलीजन को आप यूज एंड मिस यूज करते हैं, हर कोई रिलीजन भी आपको गलत बातें नहीं सिखाता कि किसी लड़की की इंसल्ट करो,
1: कोई भी नहीं सिखाता,
3: उसको डिग्रेड करो और उसको कहो इस किस्म की बातें, तो वो उसमें वो कहते हैं ना कि तुम्हारा अपना है, जो जिस तरह तुम समझते हो कि तुमने मजहब को एक्सेप्ट किया है, दैट इज योर वे ऑफ
2: थिंकिंग,
3: माई वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट, सो That's why सब बड़े वो के ओ माई गॉड इतना अच्छा इंसान भी कोई होता है कि उसको he's I mean perfectly handle, हालांकि वो भी अपने मतलब रिलीजन को बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं, ये न्यू इसने भी एक्सेप्ट किया है,
2: एंड
3: ही इज गेटिंग एक्साइटेड ऑन एवरी थिंग कि मैं तो मुझे तो अब अथॉरिटी मिल गई है दूसरों की इंसल्ट करने की।
2: और जब वो उसको पता चलता है वो अबू बकर से शादी कर रही है, तो द जेलसी एंड द रिवेंज इन हिम, ही स्टार्ट सेंडिंग ऑल द पिक्चर्स, यहाँ तक कि एक बड़ा ब्लरी दिखाया है, बेडरूम की पिक्चर भी भेजी है उसने, लाइक मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसे कर सकता है,
3: सबका अपना अपना हाउ यू टेक, वेरी गुड मुस्लिम बट नो
2: इज
3: नॉट,
2: मुस्लिम इंसानियत तो है ही नहीं ना आप में, तो आप कहाँ का रिलीजन संभालने चले, जब इंसान में कहते हैं ना कि रिलीजन कोई भी हो लेकिन जब आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपको ऐसे रिलीजन का क्या फायदा,
1: क्या फायदा। इसका भी जो है प्रोमो सुनते हैं,
3: ब्यूटीफुल
4: उसे कहो कि मुझसे शादी ना करे और तुमसे करे।
5: 4:30 पे निकाह है मेरा।

0: हफ्ते तो और आ जाओ।
1: पिक्चर सब देख ही ली होंगी आपने।
0: तुमसे निकाह कर लूंगी, तो बकर को छोड़ दूंगी।
2: मेरी और तुम्हारी गैरत की डेफिनेशन बहुत मुख्तलिफ है सामिर।
1: एक मिनट लगाओ ना, जरिया मेरे पीछे भाग दिया है।
3: जरियाब ने भी मोहब्बत के लिए गलत इंसान को ही चुन लिया था। जामिल को जैसे ही पता चलेगा कि जरियाब और अबू बकर की शादी होने वाली है, उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। पहले वह अबू बकर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश करेगा और फिर उसका ऑफिस पता करके सीधे वहां पहुंच जाएगा। जामिल अबू बकर को जरियाब के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाकर सारी सच्चाई बताने की कोशिश करेगा और कहेगा कि अगर उसे यकीन नहीं आता तो जरियाब को बुलाकर पूछ लें। यह सुनते ही जरियाब भी वहां पहुंच जाएगी। अबू बकर को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आएगा और वह घर लौटकर अपनी माँ से साफ कह देगा कि अब वह जरियाब से निकाह नहीं करेगा।
1: वो लड़की क्या लगती है तुम्हारी?
4: वो अपने रिव्यूज दे रहे हैं।
5: आई थिंक अबू बकर में इतना हौसला है कि ही विल टेक। एंड अगेन दादी का कितना अच्छा रोल है। दादी
4: आई लव दादी लग रही है। दद्दो तो आई लव।
5: एंड वो उसको कहती है कि जब इंसान अच्छा करना चाहता है शैतान उसको
4: बेकार है। शैतान और जामिल शैतान है।
5: एंड बाकी वो शैतान
4: शैतान
5: है। हां वो तो समझ गए। मैं तो बहुत गाड़ी रख ली है और मैं तो बस मुसलमान पर्दे वाली औरत से शादी कर ली है।
4: कौन ने की?
6: तो ये ड्रामे शरिया दोरे फिशन नमीर नवाज सहर रुमैसा सानिया सबा नादिया फरान अदनान एंड सोन
5: और
6: रिटन बाय उमेरा अहमद और डायरेक्टेड बाय साकिब खान।
5: साकिब खान
6: जी हां। व्हाट एन अमेजिंग
4: दैट इज अमेजिंग या
5: एंड दीस सब्जेक्ट्स किसी ने आई थिंक डर के मारे कोई
4: कर नहीं करता था और अब कर रहे हैं।
5: जो किया है इट्स रियली ओपन माय आईज एंड सो मेनी आई थिंक यंगस्टर्स स्पेशली आजकल जो हमारी जनरेशन हमारे यंग लोग हैं दे विल रियलाइज के यस हमें सिर्फ अपने आप को प्रटेंड नहीं करना कि हम मुसलमान हैं। हमें अच्छा रोल बन के दिखाना
6: है। यू नो लाइक यू नो व्हाट डू थिंक अभी जैसे वहां के ड्रामे हम यहाँ भी देख जो उधर प्रॉब्लम्स है ऐसे प्रॉब्लम्स इधर भी है। तो आपको लगता है कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है आर दे वॉचिंग इट दे आर लर्निंग?
4: आई थिंक दे कैन
5: लर्न इट। एवरीबॉडी इज नॉट वॉचिंग। एवरीबॉडी
4: इज नॉट वॉचिंग।
5: इफ दे आर वॉचिंग देन ऑफ कोर्स इट विल मेक
4: और कई लोग कई पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे उनके साथ बैठ के ये ड्रामे देखें बिकॉज दे आर रियली गुड ड्रामास।
6: बिल्कुल बिल्कुल। आज का जो शो जिसको स्पॉन्सर किया है ऑप्टिमा आईवर एंड ऑप्टिमेट्री फिर ए टू जी वैक्यूम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हरम फिर हमारे मोबाइल मॉर्गेज स्पेशलिस्ट अलीशा बेनिंग एंड जिया कास्केट प्रिंटिंग शफीन जीवानी। तो ये था आज का KWJ ड्रामा ड्रेस। थैंक यू सो मच शर्मा जी।
4: थैंक यू
6: सर जी। इट वाज ऑलवेज अ फन टू टॉक अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास। इंशाल्लाह विल बी बैक नेक्स्ट ट्यूसडे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कॉफी जलाल ऑन रेडियो संगम 94.7 FM।
7: The time is 9 p.m.
8: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: 94.7 FM रेडियो सुरसंगम हर हफ्ते 20 घंटे सुनो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 टू 5 कुलदीप सिंह विचार चर्चा शाम 8 टू 9 जितेंद्र पन्नू रेडियो सुरसंगम.ca फोन 403-585-0910 रेडियो सुरसंगम
1: व्हेनेवर यू वांट इट व्हेयरएवर यू आर एट द पाम ऑफ योर हैंड्स लिसन टू FM 94.7 एनीवेयर विद द फेयरचाइल्ड रेडियो ऐप Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
2: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.

0: रेशम सिद्धू नाल रेट जरूर चेक करो तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस लंबे समय तो भरोसे योग सेवावां लई जाने जांदे हन अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 4036074208 अकाल फॉरन एक्सचेंज
1: पूरा साल हो गया गाना सुनती नूं बस कैलगरी च कार लैण दी फीलिंग आई लई जायो वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होण दा मन बना लिया है उन्हां दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है
2: मेरी कल ही गल होई है रियालटर जग्गी ते लोहरा नाल जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई मैं सुनया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है
1: जी हां मैक्सवेल सेंट्रल रियालिटी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445
3: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
4: की होया
3: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
4: ओहो रह गए ना फेर पिछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
5: हेलो गोपी शुक्रिया तू फोन चुक लिया जिद्दण दा नवा घर लिया सज्जन मित्र फोन चुकणो भी गए
6: ओ सारे डरदे नहीं चकदे ओना नु लगदा तू मूविंग ली कहूंगा कौन इन्ने भारे सामान नु हाथ पावे
5: ओ नहीं भरावा मैं इंज नहीं करदा आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालेयां नु एक फोन करीदा ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा सामान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ
7: अपने घर जां ऑफिस दा सामान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नु अज ही कॉल करो 4038701790 4038701790 स्टार मूविंग